थयो आऊ फुमुखु पापुजी पुगे ऊ फुमुखु उना चेपी गाने चिमुख मुखु ने दो चुमी सले गाइने नेला खबी तिला थयो।

पीतीला खुचो जाम खुच मागे आदोशा ने मगाची लुवी उने गाशा मुखु ने मगाची शुवे चेखु मुखु आच न लायो ने लाखो बीतीला था पीती मिग मुखु लाखुती चेखु इले उपा मुझाच मागे आपीतिया दोसा जाको पीग जाती पीतिया ने चिमालो ने दो चुमी सोले गई ने आप चिम